0: जहरी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धेरै हुने हुँदा मृत्यु रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एउटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त भने सलाह दिएको छ।
1: नियमित रूप में हिड्नु तथा शारीरिक व्यायाम ने मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
0: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिंता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
0: चिल्लो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सक्ता र फल फूल खाऊ।
1: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौं।
0: स्वस्थ रहौं, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो गोवाला एफएम द्वारा जारी प्रसारित सन्देश।
3: तिम्रा प्रश्न, तिम्रा भावना अनि तिम्रा अनुभव अब मन मेरा राखौ।
4: माया, मित्रता, शरीर सम्बन्ध

आज क्या करता है संगीत जनता कार्यक्रम में एक स्थान में भी प्रदर्शन में संगीत नेता जुड़ा थे तब समय के आर्थिक संगठन का विशंका और मैं जिन्हें भी

संतरे खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान नदीना मस्ती ठूल रही, नियंत्रण करी, आज विपरीत जीवन बचा, निशा कारण पशी बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
0: चिनो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
1: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
0: स्वस्थ रहौँ।
2: वीडियो को आवाज़ के शुरू द्वारा जो ही प्रसारित संदेश

की कटाई ज्यादा हुई है, विश्वसनीय और आधिकारिक जानकारी को मत विश्वास कर भरोस, अपना कर्जा सुरक्षित अपने भरोस, और पुलिस चिंता लगेगा तुम तो नजदीकी को सुरक्षा कर मिले जानकारी की भरोस। आपकालीन अवस्थाओं में कहा कल करेंगे नेता प्रवेश एक सुंदर सुंदर हुआ कि भारत मानव देश विकास

0: आजकल नगरपालिका कृषि शाखा को आर्थिक वर्ष 2083 चौरासी को वार्षिक स्वीकृत अनुदान नगरपालिका अंतर्गत 50% अनुदान उन्नति विचलन करने कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम में सहभागी होना इच्छुक कृषक कृषि समूह कृषि फर्म तथा सहकारी आवेदन पेश कर सूचना प्रकाशन कर
1: यो सूचना प्रकाशन भएको मिति 1/23 अथवा 2083 साल 6/14 आरम्भ
0: कार्यक्रमको नाम छेउको विवाह 50% अनुदान सहयोग तथा कृषक तालिम कार्यक्रम
1: कृषक सभा कृषि फर्म तथा कृषि सहकारीहरू

भी गलत नहीं करते हैं। भाई इस बार सुबह कोई भी अगर कोई नहीं होता तो खास है कि क्या हो ये चिट्ठी समझाऊ इस वर्ष नौकरी विभाग गए नौ बाल विवाह होगा जिसको विभाग गए जानने

0: जब से हम खाए नहीं सुखाए सो खाई विश्व अच्छी परिवार
1: रेडियो द्वारा चाहिए प्रजारी संदेश
2: हम
0: सही

0: और अध्यक्षता में जल कार्यक्रम में बांसुरी नगर पालिका गृह का वडा अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्का सहभागी विद्यार्थी प्राध्यापक शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्ग सहभागिता रहता कार्यक्रम का संचालन विद्यालय का शिक्षक दिनेश शर्मा
1: बांसुरी नगर पालिका में आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथाम दिवस 2026 के अवसर में विद्यालय स्तरीय सचेतना तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम को एकीकृत सेप्टेम्बर 10 अर्थात आत्महत्या न्यूनीकरण तथा रोकथाम दिवस के अवसर में स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन खुलकर करीब आत्महत्या बारे समन्वय शुरू करी दृष्टिकोण बदली आत्महत्या संबंधी भाष्य परिवर्तन करी संवाद शुरू करी बांसुरी नगर पालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा का आयोजना में वार्ड नंबर 2 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय धर्मगुमा में कार्यक्रम गई। कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भूगल आत्महत्या का कारण रोकथाम बारे जानकारी का लगे स्वास्थ्य शाखा बांसुरी का प्रमुख बहादुर पृष्ठ का अध्यक्षता तथा नगर को प्रमुख इंदिरा चौधरी का प्रमुख अध्यक्षता में कार्यक्रम भेटको। कार्यक्रम में नगर उप प्रमुख चौधरी समाज में आत्महत्या का समस्या प्रति कैसे यात्रा न्यूनीकरण उपक्ष जीवी मोखाग प्रणाम चटी विशेष किशोर तथा युवा उमेर समूह का विद्यार्थी मानसिक रूप ख्याल प्रभावित विशेष नोसे नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच का विकास करना।

sulla stessa direzione tra i diritti, una sola città, una scorta attenta, mi saluteremo, e la capra di carne, molti colpassi, i cattori, poi ci ha voltato, come la vita smessi, sa si che l'entrata lì, ma la sicca sulla stessa, come la samagic, se ne occupa, pare ma, मानसिक समाज सामाजिक परामर्श करता अधिक चौधरी से आत्महत्या का हो या कारण तथा रोकथाम को उपाय बारे जन स्वास्थ्य अधिकारी सुमित्रा गिरी और आत्महत्या रोकथाम संबंधी सचेतना तथा कानूनी प्रक्रिया का विषय में प्रभारी वरिष्ठ हवलदार कुमारी रश्मि सिंह जानकारी कार्यक्रमी कार्यक्रम उपप्रमुख इंदिरा चौधरी स्वास्थ्य कर्मी प्रभारी शिक्षक तथा विद्यार्थियों का सहभागिता हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री दीपेन्द्र बहादुर स्वास्थ्य क्षेत्र में नेपाल का तीन तरह सरकार बीच आवश्यक समन्वय को तालमेल विनिश्चित प्रक्रिया स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश योजना अलग जिला स्तरीय वार्षिक समीक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यक्रम पूर्ति मंत्रीगण नीतिगत सुधार दिन स्वास्थ्य क्षेत्र का समस्या समाधान कर कठिन होना बुधवार तीन तरह सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत सुधार कर पन्ना चुनौती स्क्रीन करना उपलब्ध विभाग खरीद करने पैदा हो विभाग खरीद करना पर स्क्रीनिंग कराने पैदा सचिन जटिल नीति सुधार कर पन्ना को मंत्री पूर्ण सरकार का नीति तथा कार्यक्रम फर्दर को से वह अनुसार का परिणाम फिर पत्र प्रति व्यवस्थित कार्यक्रम हो कार्यक्रम में जोड़ दिन शिक्षा स्वास्थ्य हो कृषि परिपूरक का रूप में आत्म पढ़ाई क्षेत्र शिक्षक स्वास्थ्य क्षेत्र का दीर्घकालीन सुधार संभव कार्यक्रम सीमा कार्यक्रम संख्या कार्यक्रम प्रज्ञा पाठ्य स्थानीय तह को स्वास्थ्य शाखा वर्षभर कार्यक्रम को समीक्षा कर संघ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा को अभ्यास चुनौती हो अवसर के विषय में से राजापुर जोड़ना पुराने सड़क तथा ठाव ठाव में जीर्ण होता सड़क जीर्ण हुए दुर्घटना जोखिम स्थानीय स्थान पर गुनासु करिया बजार से पश्चिम राजापुर सड़क में दुर्घटना हुई व्यक्ति सड़क डिवीजन कार्यालय से मरम्मत तो नहीं कर स्थानीय गंगा का हैदराबाद आवश्यक ठाव में मरम्मत निकल मजा वो सफा सड़क में मन लगे मरम्मत कर आरोप समेत बिना करिया नगर पालिका एक अंतर्गत पर्वतिया मंदिर हो हसु शिव चुक ठाव में सड़क में प्रति पलक दस दिन से ठहराब ली व्यक्ति मरम्मत जो हुई सकत स्थानीय आधा से ढेर भाग चीर्ण लघु सड़क में सवारी साधन आधा भाग से केलक संचालन कर पड़ना वीरपुर से दुर्घटना जोखिम बहरबा खैरपुर का स्थानीय रामू भंडारी सड़क चीर्ण विलक एक वर्ष से ढेर मिल सके मरम्मत निकले जोखिम बहरबाजिया नगर पालिका एक कौरात से ज्योतिराम ठाकुर की सड़क अधीन सड़क डिवीजन कार्यालय पार्टी प्रमाणपत्र मरम्मत को से मरम्मत का जानकारी करें पटेला सड़क डिवीजन कार्यालय पार्टी का सूचना अधिकारी इंजीनियर राम सागर हरिचंद यह विषय में छलफल करना पटेलवा भारतीय में नेपाली सेना विद्यार्थियों का रक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन ठाकुर बाबा नगर पालिका आरक्षित कहिया चंद्रमा माध्यमिक विद्यालय में कक्षा एघारह बारह पढ़ने विद्यार्थी कार्यक्रम पर्व हो प्रक्रिया राष्ट्रीय निकुंज का सुरक्षा में तैनात सफल संघ गण विद्यालय का इको क्लब संरक्षण कार्य में आयोजना कार्यक्रम में 28 छात्र और 52 छात्र सहित 80 जना विद्यार्थी का सहभागिता कार्यक्रम में सफल संघ गणगणपति प्रमुख सेनानी दीपेन्द्र साई भारतीय राष्ट्रीय निकुंज का महत्व परिचंक वनस्पति तथा जैविक विविधता का संरक्षण बारे विद्यार्थीगण जानकारी दिल वहां मध्यवर्ती क्षेत्र में महिला मानव वन्य जंतु द्वंद न्यूनीकरण प्रति मानव वन्य जंतु विश्व अस्तित्व कायम कर आवश्यक प्रकृति तथा जैविक विविधता का संरक्षण कर विद्यार्थियों युवा का समेत सामाजिक कार्यक्रम में निकुंज का प्राकृतिक संपदा पर्यटन तथा संरक्षण का चुनौती बारे जानकारी देना डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी कई विद्यार्थियों का नेपाली सेना का
પરીક્ષાના પરથી આધારે જાણકારી દેતી આ પ્રસંગે બધા લેખિત તથા પ્રયોગાત્મક પરીક્ષા શારીરિક પરીક્ષણ પ્રી મેડિકલ ઓરિંગ ચેક સગાઇટ ચરણ બારે જાણકારી કરાઈ હતા. આપ રાષ્ટ્રીય સમાચાર પાલે કેન્દ્ર છે.

0: सिंधी आता रहता है।
1: जीवता सिंह स्थापन कर बताई हानिकारक नहीं होता, उनके यदि सफल कर जाए पर ऐसी उनका लड़का उपचार केंद्र में जाने पर
0: विश्वास लगा और सही जानकारी पैक लाख और लघु उपचार केंद्र का आधिकारिक www.nepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।

हिंदा जगह को कुल शांति को 75 प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्र में उल्लेख रहकर प्रधानमंत्री को सचिवालय ने बढ़ाया। इसको हमारा

0: नमस्कार, मेरा नाम रत्नराज चौधरी। आज श्री नगरपालिका द्वारा
1: Thank you.